0: गया सर जो पास है।
1: Afternoon, guys, 705 to the ILS, or the Visual Warning Center with Yankee. Go ahead, 107, guys, 705.